जिसकी सिर सब करने हार वरना गुर करत विचार करते की मित न जाने की नान जो सपावे सो भरतिया विस्मर विस्म पै विस्मार जन बुझा तसाया स्वाद प्रभ के रंग राजा रह गुर के भजन पदार्थ लै ओए दाते तो कट नार जा कै संत संसार जन का सेव सोवड़ पागी जन का

ब्रह्म जन जन्म पार्वम एक अपने कछ परम सह सण पल ना जाइए नानक ऐसा गुरबट भागी पाई है सब दर्शन पे खतपनी।

0: राम राम जी बोलो,
1: राम राम राम राम राम जी बोलो,
0: नित्य नित्य जपिए राम नाम जी बोलो,
1: नित्य नित्य जपिए राम नाम जी बोलो,
0: कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जी बोलो,
1: कृष्ण कृष्ण
0: बोलो, कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जी बोलो,
1: कृष्ण।

0: ってな、しょてら。
1: Baba, Baba, what happened, Baba? We heard some noise. What happened, Baba?
2: Yes, this child was destined to die of cholera in Bandra. I asked him to stay back here and thus saved him. Beta, this Sai has taken care of you life after life. I never forsake my devotees. I am a slave of my devotees. Listen to me.
3: मेरे भक्त दिल और आत्मा से जुड़े हुए हैं, जो भी मेरी लीलाएं सुनेगा उसे सुख और शांति प्राप्त होगी। जो दिल से मेरी आराधना करेगा वो मोक्ष को प्राप्त होगा। मेरी कथाएं जीवनदायी हैं, उन्हें ध्यान से सुनो और ग्रहण करो।
4: जय बोलो साईनाथ महाराज की।
5: जय
4: जय बोलो साईनाथ महाराज की।
5: जय
4: जय बोलो साईनाथ महाराज की।
5: जय।

पौड़ी तुद जग मैं खेल रचाया विच हम मैं पाईया एक मंदिर पंच चोर है नित करै बुरे आईया दस नारी एक पुरख कर दसे साध लुभाइया एन माया मोहनी मोहिया नित फिरै परमाइया हाठा दोवै कीतियो शिव सख्त वरताइया शिव अगै सख्ती हारिया एवै हर पाइया एक विचों ही तुद रखिया जो सतसंग मिलाइया जल विचों बिंब उठा लियो जल माहे समाइया दखणे महला पंजवां आ गाहां कूतरांग पिछा फेर ना मुहडड़ा नानक सिज वेहा वार बहुना होवी जन्मड़ा महला पंजवां सज्जन मैंडा चाहिया हब कही दा मित हबे जान अपना कही ना ठाहे चित महला पंजवां गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया सोई सुहावा थान जिथे प्रिये नानक जी तू उठिया पौड़ी जा तू मेरे वल है ता क्या मोहशंदा तुद सब किश मैनो सौंपया जा तेरा बंदा लक्ष्मी तोट न आवई खाए खर्च रहंदा लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा एह वैरी मित्र सब कीतिया न मंगै मंदा लेखा कोई न पुछई जा हर बख्शंदा आनंद पया सुख पाया मिल गुरु गोविंदा सबे का सुवारे है जा तुद पावंदा दखणे महला पंजवां देखण कू मुस्ताक मुख के जिहा तौ तणी फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मंत्रापया महला पंजवां दुखिया दर्द घणे वेदन जाने तू तणी जाना लख भवे प्री डिखंडो ता जी वसा महला पंजवां टहंदी जाए करार वहन वहंदे मैं डिठिया सही रहे अमान जिन्ना सतगुर भेटिया पौड़ी जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै जिन जन गुरमुख बुझिया सो चहो कुंडी जापै जो नर उसकी सरनी परै तिस कंबै पापै जन्म जन्म की मल उतरै गुर धूड़ी नापै जिन हर पाणा मन्या तिस सोग ना संतापै हर जियो तू सब ना का मित है सब जाने आपै ऐसी शोभा जने की जेवड़ हर परतापै सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापै दखणे महला पंजवां जिन्ना पिछे हों गई से मैं पिछे पी रव्यास जिन्ना की मैं आसड़ी तना महिंजी आस महला पंजवां गिली गिली रोडड़ी पौंदी पव पव आए जो बैठे से फाथिया उबरे पाग मथाए महला पंजवां डिठा हब मजाहे खाली कोई न जानिए तै सखी पाग मथाहे जिन्नी मेरा सज्जन रावया पौड़ी हौं ढाडी दर गुण गावंदा जे हर प्रभ पावै प्रभ मेरा थिरथावरी होरे आवै जावै सो मंगा दान गुसाइया जित भुख लै जावै प्रभ जीओ देवो दर्शन अपना जित ढाडी तृपतावै अरदास सुनी दातार प्रभ ढाडी को महल बुलावै प्रभ देखदिया दुख भुख गई ढाडी को मंगण चित ना आवै सबे इच्छा पूरिया लग प्रभ कह पावै हौ निर्गुण ढाडी बख्सियोन प्रभ पुरख वेद आवै दखणे महला पंजवां जा छुट्टे ता खाक तू सुन्नी कंतना जानही दुर्जन सेती ने हो तू कै गुण हर रंग मानही महला पंजवां नानक जिसबिन कड़ी ना जीवना विसरे सरै ना बिंद तिस स्यों क्यों मन रूसीऐ जिसै हमारी चिंद महला पंजवां रते रंग पार ब्रह्म कै मंतन अत गुलाल नानक विणना वै आलूंदया जिती होर ख्याल पवड़ी हर जियो जा तू मेरा मित्र है ता क्या मैं काड़ा जिनी ठगी जग ठगया से तुद मारने वाड़ा गुर भौजल पार लंघाया जिता पावाड़ा गुरमती सब रस भोगदा वड्डा आखाड़ा
ਸਭ ਇੰਦਰੀਆਂ ਵਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਓ ਸਤਵੰਤਾ ਸਾੜਾ ਜਿਤ ਲਾਈਨ ਤੈ ਲਗਦੀਆਂ ਨੈ ਖਿੰਜੋ ਤਾੜਾ ਜੋ ਇੱਛੀ ਸੋ ਫਲ ਪਾਇੰਦਾ ਗੁਰੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਪਾਏ ਰਹੋ ਹਰ ਵਸਦਾ ਨੇੜਾ ਡੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਆਵੈ ਚਿੱਤ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੱਬੇ ਸੁਖ ਲਹਾਓ ਨਾਨਕ ਮਨ ਹੀ ਮੰਜ ਰੰਗਾ ਵਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਹਿੰਜਾ ਨਾਉ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕੱਪੜ ਭੋਗ ਵਿਕਾਰ ਇਹ ਹੱਬੇ ਹੀ ਸ਼ਾਰ ਖਾਕ ਲੋੜੇਂਦਾ ਤਨ ਖੇ ਜੋ ਰੱਤੇ ਦੀਦਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਆ ਤੱਕੈ ਬਿਆ ਪਾਸ ਕਰ ਹੀ ਅੜੇ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਥੀਓ ਸੰਤਨ ਕੀ ਰੈਣ ਜਿੱਤ ਲੱਭੀ ਸੁਖ ਦਾ ਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਹਰ ਜੀਓ ਨਾ ਪਾਈਐ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਨੁਆ ਨਾ ਲੱਗੈ ਧਰਮ ਧੀਰਾ ਕਲ ਅੰਦਰੇ ਇਹੋ ਪਾਪੀ ਮੂਲ ਨਾ ਤੱਗੈ ਅਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਅਹ ਕਰ ਪਾਏ ਇੱਕ ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਨਾ ਲੱਗੈ ਚਾਰੇ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋਧਿਆ ਵਿਣ ਸੰਗਤ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭੱਗੈ ਹਉਮੈ ਮੂਲ ਨਾ ਛੁੱਟਈ ਵਿਣ ਸਾਧੂ ਸਤਸੰਗੈ ਤਿਚਰ ਥਾ ਨਾ ਪਾਵਈ ਜਿਚਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿਉ ਮਨ ਭੰਗੈ ਜਿਨ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਿਆ ਤਿਸ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣ ਭੱਗੈ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨੀ ਲੱਗੈ ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਲੋੜ ਇੰਦੋ ਹਬ ਜਾਏ ਸੋ ਮੀਰਾ ਮੀਰਾ ਨਸਿਰ ਹੱਠ ਮਜਾਹੂ ਸੋ ਤਣੀ ਚੌਂਦੋ ਮੁਖਿਆ ਲਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਣਕੂ ਮੋਹੇ ਮਾਓ ਡਿੰਨਾ ਤਣੀ ਅਪਾਹੇ ਹਿਆਓ ਮਹਿੰਜਾ ਠੰਡੜਾ।

मूर्ख मुक्त गवार, राम नाम जान्यो नहीं कैसे उत्तर सपार। राग मारू बाणी जय देव जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया, नाद सत पूरिया, सूर सत खोड़सा दत किया। अबल बल तोड़िया, अचल चल थपिया, अखड़ घड़िया तहां अप्यो पिया। मन आद गुण आद वखाणिया, तेरी दुबदा दृढ़ समान्या रहाओ। अर्ध कौ अर्धया, सर्द कौ सर्दया, सलल कौ सलल समान आया। बदत जय देव, जय देव कौ रम्या, ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया। कबीर मारू राम सिमर पछताहेगा मन, पापी जियारा लोभ करत है, आजकाल उठ जाहेगा रहाओ। लालच लागे जन्म गवाया, माया परम पुलाहेगा, धन जोबन का गर्भ ना की जय, कागद ज्यो गल जाहेगा। जो जम आए केस गह पटके, ता दिन किश ना बसाहेगा, सिमरन भजन दया नहकीनी, तौ मुख चोटा खाहेगा। धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लैके जाहेगा, कहत कबीर सुनौरे संत हो, साध संगत तर जाहेगा। राग मारू बाणी रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसी लाल तुझ बिन